0: नहीं नहीं नहीं रचति दुःखकरणी नहीं नहीं रचति दुःखकरणी
1: Thank you.